ए फिनिफेम मागस बोथिर कोल्लागेन ओइक गोय फिनेता ए मागस उस्कों हुरिनमविस एवती वरम मडमोलिकमायक इष्टहा लागे आहरमिमिस वांजहेनी एपद बयक अल्लाह ताला आहरमिन्ना नियमते देबमु दुहाकुइस बोडावेगे नवाने ए हफ्तागे पहुकोळ एकुदिन कियवा मदरसागा गुरुवान कियवुंगे मुबाराते बेबुने ए मुबारातुन सियारा एवन होदुमुं एममेन एनाया मरहबा किया अज्जहिए रौशा सिर्रु सिर्रुं सियारा गातुग बुन्ये सियारा ती एम्मे मोळुकुच्चा तिकमा पहुरुवेरी बांबाने नमवे सियारा बोहुरालमु बुन्ये रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबणी अल्लाह हट्टका मीहकु मडमोळी वेज्जेनमा एकलांगे एमीहिग्गे दरजा उफुल्लवानेते मिकामियाबिय की अल्लाह गरहमेफुलुं दिपुनु कमे एना अल्लाह शुक्र अदा करमफहु एहिं कुदिनवेस रीतको खियवमगे तौफीक देवमंगे दि दुआ करिए मुदर्रिस हिनेतु मेलाफ बुने सियारागे मडमोळिकमगे सबबुं खियवुं इतुर फुरिहमवे रीति वेच्चे एद्दुवहिग्गे मेंदुरु फहुगे वगुतेग्गा मुस्कुळि अंहिनकु वर बरु फेंबाली दिएं उफलनिकों एदे कुदिनव फेनुने रौशा एमीहाया बलालमफहु फस्तेहिफा बुने आहरमें मी कुडकुदिनेनु बडति मीहुं एमीहायां एहीपां वानेनु सियारा जवाबुगा पुन्ये मडुमळिकमकी आहरमेन्नकी कुडकुदिनकमुगावी नमवेस आहरमेन्न वीवरकुं एहेम्मीहुनं एही तेरिवों एदेकुदिन एकुवेगें एबरु बालिदी एमीहायां उफुला दिने ए मुस्कुळि अंहेम्मीहा एकुदिनन हेदुआ कुरिये अल्लाह तआला तिकुदिनन मडुमळि हितकायकु हिदुमेकुरा बयकमुगा लब्वाशिये रौशा सिर्रु सिर्रु सियारा गातुग पुन्ये एही तेरे वोमन लिबुन उफा मुबारात को मलवो मावरे माँ बुडे सियारा एकमंग एब्बसवा मु बुन्ये ए मडमोले कमके सबबुं हितं उफा वेरी कंदी बेतीये हुकुरु दुवा हु ए देखु दिन आइला आया कु बड़ु केओ में तैयार पुरिये ए केओ मंगाय मेहमानों सियारा मेंगे मम्मा मेंगे केक कुमक वरब बड़ो तावरीफ पुरिये ए हिंदु फहुरु वेरी कमाए कु रौशा बुन्ये आहरमेंगे आइलाय की मेहमान तारी अदा कुरमुगा एम्मे मोळु आइला सियारा मडुमातिरि कमायकु रौशाय विस्नादिने मडुमळिकमकी आहरमेन्नकी एहेम मीहुनवरे मोळु बयक्कमुगा नुदिकुमे कोम्मे आइलायकव विस मैं अल्लाह देव्वा फवा नियमैत्ते किव्वे आहरमेन जेहेनी एकलांगे शुकुरु वेरिबाशे अलाकिया कन्नूने एकुदिंगे मम्मा इतुरु कोल्दिये मडुमळिकमकी हित्त गुळुवादे कमिके नमविस बुडाकमगे सबबुं हित्त वकिवेगेंदे एद्दुवहेगे इरोसुनु वगुतु बोको वारेवेहि बिंगणु तेम्मालिये ए मंजर बलं हुरेफा रौशा बुन्ये बला बला उडुं विहे वारे कितेम्मे मतिं आनमवेस ए बिमुगा बीहेनी किहा मडुमाती कमा एक्का हैये एई एगे सबबुं दिरुं दिबेने सबबेके सियारा हिनितुं वेलुमायकु बुन्ये एहेम वीमा कितेम्मे मती दरजेग गावा एच्चेवेस फायदा हुरि एच्चक वाणी एच्चे तिरिवे मडुमोळि बुमुं ताये रौशा बो जहालमुं बुन्ये एई मडुमोळिकमुगे सिर्रे एकमुगे सबबुं आहर मेन्नकी एहेम मीहुन्ना बेनुं तिरि बयक वेगेंदे एद्दुवहेग्गे मदरसागे कुलास गडीगा मुदर्रिस सोदगाय कुरुमा गुळेगुतुं फिलावळे नंगवा देव्ये पिलावळ अडुहाफा सियाराया रौशानिम्मी एकुदिंगे अम्मती फैसाइन फगीर कुज्जकं एही तेरवमशे नमविस एकुदिं एकंकुरी सिड्रियातुगे रौशा सियारा गातुगे हिए एम्मेन गातुगे मिवाहा कनुगुणं वी की वेहिए एरुं आहर मिन्नकी दीलति कुदिंकं एहेम्मी हुनं इंगेने जवाबुगा सियारा बुन्ये मडुमळिकमकी हमायकनि मैं अल्लाहुं इंगेने हिं हेवामलता सिड्रुं कुरुमे एरों आहरमेंगे हित्ता साफ कम्मती देमी ओन्नाने ए हफ्तागे एहिं दुवहिका फिलावळु नंगवा देव्वमुं ए कुदिंगे मुदर्रिस किया देव्विये एम्मे हेओगेम वा सदकाते की सिर्रियातुगा देवे सदकाते मडुमळि कमायकु हेदकुरा मीहुंदेके मैं अल्लाहु लोबे वडिगन्नवे ए दुवहकु कुळे मैदानुगा कुळिवरुगे इस्वेरियकं हुन्नानी खाकुतो बहुस्कु मस्सलें उफिदुने रौशा एहिं कुदिना दिमालं हळे लवा गन्नमुं मुन्ये कुळिवरुगे इस्वेरियकं हुन्नंवाणी अहरे एम्मे बुद्धिवेरी अहरे एवगुतु मस्सल हल्लु कुरुमट्टका सियारा वर मडुमातिरि कमायकु वुन्ये दीडरक वा कुज्जागे किबागा बोडावुमुगे सिफहुरि गेन्नुवाणे एफहु एना पहतज जेहला एहिं कुज्जकं इस्कं दिने सियारागे एहित्तिरि कमा मडुमळि कमा मेदु एहिं कुदिं उफाकु एनाया एहतिराम कुरिये अदि अलुं कुळिवरुगे तेरियं उफावेरिकं वेरिवेगें दिये स्कूल का उलमुग तेरेगा रौशा गया तुम गस्तखानुला सियारा के फोता देली अड़ुने

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते। मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला दो फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अधि मीडिया नेट बिल कस देख के ने। रीलोड, रास्टस नूनी डेटा पेक्वस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेट है। देने मस देबाय वायरो बिल नु देखी गेंग लारिया वीनु ये नेंगी गेंग उले कर नुझे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाही पे मा फाही।
3: टेक्नोलॉजी या साइंस के दायरा में बड़े ती कुंफुनी तक उनके नमन दा बदल तक बालानुला मी दतुरु निम्मालु मकी हम गैमिस अड़गण वरंग उन्दा गो कमी मी हफ्ते हाँ सेटेक के एम मी फहोगे खबर तंग अड़वाहाला ती ऐ हुन तेरी तैयार तो मी हफ्ते आगे खबर तक आ की वस पत्तल पुरानी मोसा अश्वान
4: खबर

0: Tech Talks.
1: मैं प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर फाहिपे।
2: बिल तक दक्कम फंसे हैं गोते? मियोती फाहिपे ऐप। बिल तक अंगारा जुमला अदु फाहिपे ऐप ट्रांसफर कोल्ला। देंगा महुरिया बिल तक फैसा दक्का निम्मा लम्बी। फोन, फेंग, गैस अदि मीडिया नेट बिलकस देख्के ने। रीलोड, रास्टस नुनी डेटा पेक्विस नेगे नेंगे। मी हम डिजिटल वॉलेटे। देने मस देबैवैरु बिलनु देखिगें लारिया वीनुए नेंगिगें उलेक नुजे ने। हुरिया डिजिटल पेमेंट का फाहिपे मा फाहि।
0: Tech Talks. टेक्नोलॉजी के बोले थी कंफर्ट तक उन आपात व्यवस्था ने अलग में के दुआ ही दिलों में फंसे हकुर मट्टा का एक ही कहला ईजात तक का ए ईजात तक एक ही बदल तक गिरना मुं मेरे तो किधर रखी टेक टॉक्स के टीम उन टेक्नोलॉजी के दुनिया कुरा एम में फाहुद तरु टेक टॉक्स के टीम आए को टेक्नोलॉजी के दुनिया थी अकुरे विदतुर तक उन टेक्नोलॉजी या साइंस के गुरह हैं तफात ईजात तक का कुंफुनी तक उन ईजात तक का गिना मुंदा ऐता फरने बदल तक के फेनी आडू इविचे मिहा हिसाबों मिफा हो दतुर ने माला फा एम्बुरी आलगन में के दुनिया दा दतुर फशन जेहे वागुतु मिवनी जेहिफा टेक टॉक्स के टीम आए को दतुर दोग पैवेरी बीती शुक्रिया वस्सलाम अलैकुम
3: Tech Talks.
0: Program Hushaili Algun Nafis Abdul Rashid. Program Gahimanafawa Report the Hushaili Aziza Farooq. Program Gahimanafawa Khabar the Ginistini Musa Rashwan. Program Mufaddaikulawali Musa Rashwan. Me Divi Rajjegadu Fetume.

0: आदे देवी राज्यगढ़ के स्टूडियो एम बलगन में खुरी एम मिगिंदनी अतुका हिफा मी प्रोग्राम के इंतजार को तिबेवी एम हा फरा तक मी हफ्ता के विस मरहबा दनवा मी हफ्ता के प्रोग्राम गलगन में वाहक दक मुंदाणी मसकत के माहौल को दिन निरमुगा गेतरे देवी दाने तरबियता गुले गुतु मी मौलु वाहक दिकमट कालगन में नायकी का तिम बेफला को मी देस एब बार वडानवा ए रिफा नशीद अलगना एम मी गातो मी नवी दिन रिफा की अलगन में गिबी प्रोग्राम का हासगुतिका अतुका हिफा मी सिलसिला प्रोग्राम ता गवर किना बार वडानवा वर किना ख्याल ता देवा मुहिम वाहक ता के फाळु कुरवा बेफला के गुतु का फाह कोलानी मी हार मसे के कुरव मगेनवनी काउंसलिंग के दायरा के लेक्चर आय के गुतु का मी गेतिरुं मी फदा कुज्जकु गेंगुले बलहट्ट मुंदा मम्मई बेलेनी वेरिए तौलिमी मसकद बलाकम गवानम तौलिमी तजरिबाय बलाकम गवानम मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस के दारे मास्टर्स डिग्री हासिल को फवे देन एगे इतरुंग अलगुन एकेगा मीनवी एमनत खालिद मीनु कुलदिन तिरगा हुन्ना कुदिन तके गेंगुले मम्मई बेलेनी वेरिएन आदि एफद वर गिन कुदिन गे कंकम वर कातुम बलहट्ट मुंदा वरन हीवागे मम्मई देन अलगुन मेंगे मी प्रोग्राम ग हमारी फाय के गतंग एमनत खालिद वेसम वर गिन प्रोग्राम तक बारे वडागे वर गिन मुहिम वाहकतक हिसा को देवा देन अलगुन नायकी का पैराडाइन वा बेफलकी आयशत अली मास्टर ऑफ एजुकेशन टीचिंग एंड लर्निंग वी आहार दो के तजुर्बा होरे मिहारिस मि दायरा का मसे के कुरव मु गेंद वा बेफले तिम बेफलनेस प्रोग्राम के फनात वर बडा मरहबा गेत
1: शुक्रिया
0: केनेतो वर उफाव जनिका वस बदल वीति मि हफ्ता के प्रोग्राम का अलगुन में अली अलवालानी कुदिन मसकत के माहौल नेरुम के कुरिन के तेरे देवदाने तरबियता गुले गतन तरबियता की हमगा मस वर मुहिम मुकामे हासगतिका बेलनिवेरि वर बुडा समाल कन देन जे हासगतिका मिफदा कुदिन बेल हेट्टुमुगा बेलनिवेरि एबा वर गिन गुत गतुं अलाला एकुदिन लोबिदी वर गिन गुत गतुं एबा बलहट्टन जे मे नुकुडतुं तिरिकन हुन्न कुदिन न गे तेरेगे मसकतुका मसकैत हवाल कुरुमुगा नोनम गे तेरेगे मसकैत मसकैतुगा शामिल कुरुम्मी की मुहिमु कमेगे गतुगतो फाहकोलवनी
1: मियारो आणि मी असलो हुरिहा को दिन हमे कन कुले दुन तरीका हुन को दिन ने हुरिहा को दिन वेस असलो आणि बडवा मंग अनेर वर मुहिमु कमे कनिंग गेतरे खं कम ग इन्वॉल्व वा ए हम नॉर्मल को मिदा हम गेतरे ग कुरा मसेकत हो गया बदिगे ग कुरा मसेकत हो गया अमिल्ला कुज्जा ग अमिल्ला नफसा कुरा कं कम गया एकु दिन ग अमिल्ला अतुं इन्वॉल्व

0: tan kole kurig handan tan mere mulim bes mianane hama mikala lavata hinga balal mane kas bavre ka guli feyo ti assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: ina
1: a
0: ko ba med kine
1: mia do den anin oke do
0: oke oke bune fani male makama konun dane adi anin kenne tibuni ऐसे माने कि नारे सते क्या कमी फारुक दो
1: सते क्या नारा सते क्या अड्डी हाँ गोले
0: अड्डी है गए तं कोड़ जस सालन जहेना कोमेसी रखूंगे कोंगे रखूंगे मसे के कुराने मिहार स्कूला मुंडो थी तने
1: मिहार वस दें कुरा मुंडे दंडन नी दे मतलब तो रे बे हम जे तम मिक्स पलंगे बजे है कोमेह में
0: नेतन वाका मैचनु बाला वाकने मलुवांग है बजे
1: हाँ मलु ऐसा लिपे नहीं हाँ सुफिया
0: आह है मम्मी क्या नहीं हो रही हाँ खुद में सपोर्ट को दिच्छे दो मलु कोरंग
1: हाँ
0: दें बाला माहेगा ऐ मम्मी दो दें कौन कौन कांति तक के कॉल्ले उन्हें त्याड़ी है पासेंट आगरा
1: नहीं तो हम
0: आम को करा कंता था आ का मैं नुकरे भी मिल दिए दो मिया
1: आ का मैं नुकरा
0: हम भी मैं ती पासेंट माथी नुए मिल दिए दो आने कम के कुड़को बाली दो
1: कुड़कम बाली भी हो रहे थे या
0: इराद करे वे रंगलवन अवर आवश्य फ़ायर किए थे नहीं ना ये
1: दागने
0: का आलम भी हो
1: Daganu
0: ne tiyo dengen daganu kaya ni naman daganu. Ah, tiyo huni kanta ka inge ina ginang kaati daganu Fine, fatay do mi humbulani.
1: Ah, mi aru sa babong hindi no hospital ho re moranga fine.
0: Asta.
1: Tugo biya.
0: Mi may bay rad kira orawa ha puri hamo wani kama balama hinga do.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.